0: Mica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
5: खुद से भी ज्यादा।
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
5: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
3: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
6: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk।
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Lyca Radio.

पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भखाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

0: अजीब दास्तां है ये. What a beautiful track in the vocals of लता मंगेशकर. ऐसे वाले गाने ही गोल्ड को गोल्ड बनाते हैं. दिस इज लाइक अ गोल्ड. आई एम वीर गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 10 AM. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर. स्टे ट्यून्ड.
1: Leica Radio Network, broadcasting across the Midlands.

0: Locate, design, manage, cater.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
2: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: जी हाँ, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, परफेक्ट फॉर द मॉर्निंग मंत्रा. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट ऑफ कोर्स वी गॉट टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड कैरी ऑन, बिकॉज यस वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर. व्हाट अ लवली ट्रैक फ्रॉम द सुपरहिट मूवी वक्त. आई लव द स्टार कास्ट, साधना, शर्मिला टैगोर एंड द लेजेंड्स राजकुमार एंड सुनील दत्त विद the lovely Shashi Kapoor. Balraj Sahani was also there in this movie, a multi-starrer directed by Yash Chopra. What lovely tracks only on Alaika Gold.
1: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
2: ये है Laika Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June. 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
5: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ.
6: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए.
5: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है.
6: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू.
5: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
7: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता.
5: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.

0: जी हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं जी मुझे, आप भी बहुत अच्छे लगते हो, इसके लिए तो मैंने इतने प्यारे प्यारे गाने लिए हैं। इन माय गानों का बेटा राधे, दिस इज लाइक अ गोल्ड एंड आई एम वीर गिव यू कंपनी ऑल द वे टिल 10 AM।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling can get you up to 128 Indian rupees, 375 Pakistani rupees, 446 Sri Lankan rupees, 165 Bangladeshi taka and approximately 84 Afghani afghans.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold's trading at £108.13 per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 2.

जाने दो ना फ्रॉम द मूवी सागर इन द वोकल्स ऑफ शैलेंद्र सिंह एंड द सुपर डुपर माय फेवरेट आशा भोसले. गॉड आई लव हर वॉइस. आई थिंक उनकी आवाज में जो शोकी है जो मस्ती है दैट इज सो सो सो कूल. वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सिंगर्स. मुझे उनके गाने बहुत ज्यादा पसंद है. जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई हैव सम अमेजिंग ट्रैक्स दिस आवर टू इन माय गानों का पिटारा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस. वेल योर मैसेजेस एक्चुअली मीन अ लॉट एंड दे मेकिंग माई डे. इट जस्ट गिव्स मी मोटिवेशन टू प्ले गुड म्यूजिक एंड स्पेशली बिकॉज आई एम covering the lovely Kajal. I want to ensure ki aapka breakfast show full on mazedar ho. I am Veer in for the lovely Kajal on Like a Goal Radio, London's number one Asian retro music station, available on 10:35 a.m.

0: ने दीवार है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June
2: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉन

0: है ना, ये परफेक्ट वाला गाना फॉर दिस अमेजिंग वेदर. वेल, पीपल कंप्लेन की बारिश हो रही है, बट आई काइंड ऑफ एंजॉय द रेन्स एंड आई थिंक दिस सॉन्ग, ये मौसम भीगा भीगा है, इज अ परफेक्ट सॉन्ग फॉर दिस वेदर. इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड रफी साहब.
1: Laika Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
0: So gold's trading at £108.13 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116

0: जी हाँ, आने वाला पल जाने वाला है एंड एक और सॉन्ग आफ्टर दिस लवली ट्रैक एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय. वेल, इट्स जस्ट अ बाय फॉर टुडे. आई विल बी विद यू टुमारो. रिमेंबर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड, बिकॉज नेक्स्ट अप इज द लवली रवि शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड.
1: Another huge giveaway is coming.

0: good morning. जिंदगी की एक और सौगात, एक और मुलाकात, संगीत के सुहाने सफर पर आपका हमारा एक और साथ। मंगलवार वर्ष 2026 के जून महीने की 2 तारीख, और बहनों भाइयों, एक और मनोरंजन कार्यक्रम लेकर आपका दोस्त रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है। अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और भाई बहुत सारी क्या कहे अटखेलियां शरारतें, भाई शरारत तो चाहिए ना। थोड़ी सी संजीदगी, ज्यादा शरारत चाहिए, कह कहे मुस्कान खुशियां और मसरत चाहिए। ऑक्सीजन मांगता है कौन जीने के लिए, अरे साहब जिंदा रहने के लिए हमको मोहब्बत चाहिए। गुर सिखाते हैं हंसी के मुफ्त, हर बुधवार को मंगलवार को सोमवार को, यानी 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार। बस सीखने की आप में थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। पर से हल्की मुस्कुराहट जीत ले एक पल में दिल, पहलवानी चाहिए ना कोई ताकत चाहिए। जिंदा रहने के लिए हमको मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत के लिए आपकी इजाजत चाहिए।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: ऑक्सीजन मांगता है कौन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमको मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत के लिए उनकी इजाजत चाहिए। किनकी? वो कह रहे राधा की। हाँ?

जूतों पर भी गीत बने हैं भाई, कई बने हैं। हाँ, वो जूते दे दो पैसे ले लो, वो भी सुना होगा आपने। जूतों का जिक्र शायरी में भी होता है, कविता में होता है, साहित्य में होता है। अरे साहब, इतने गए गुजरे हैं। और जूते की एक खास बताएं आपको भाई, जूता बड़ा वफादार होता है। जैसे अगर एक जूता टूट जाए तो दूसरा चलने से इनकार कर देता है, एक किसी काम का नहीं। दोनों साथ रहेंगे जिंदगी भर, आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक। भाई जूतों के ऊपर हमारे डॉक्टर सत्य शर्मा जी ने बड़ा बढ़िया लिख के भेजा है। कहते जूतों के बारे में इतने मुहावरे हैं, किसी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहने लगे जूते ने काट लिया। अरे वाह, जूता काटता भी है। एक दिन उन्हें जूते में तेल लगाते देखा, पूछा भाई क्या बात है, कहने लगे जूता चू चू करता है, आवाज करता है, जूता बोलता भी है। और साहब फिर एक दिन किसी के बारे में ये कहते सुना कि वो तो सिर्फ जूते का यार है। अरे ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा, जूतों का यार है, जूते दोस्ती भी निभाते हैं। और भाई कल चाचा जी अपने बेटे को डांट रहे थे, कह रहे थे तू जूते खाए बिना नहीं मानेगा, जूते खाए भी जाते। होली पर देखा कि एक मूर्ख को गधे पर बिठाकर उसे के गले में जूतों की माला पहनाई गई थी। तब समझ में ये आया कि भाई जूते जो है वो सम्मान देने का भी काम करते हैं। हार बन

0: अब ये समझ में नहीं आता कि ये सम्मान, ये ऑनर, ये एजाज एक्टर का हो रहा है या जूते का। और आपको पता है जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है ना तो उसको जूता सुंघाते हैं। मतलब मेडिसिन का काम भी करता है। और शादी में दूल्हे की सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं, वापसी के बदले पैसे मांगती हैं। मतलब ये है कि भाई जूते का अपहरण भी होता है। और जूते की सिटीजनशिप भी होता है, होती है, ये पता आपको? ये गाना बता रहा है, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता भाई कहाँ का है, इटालियन है। मतलब उसकी सिटीजनशिप भी होती है, उसके देश का भी नाम होता है। जूता काटता है, जूता बोलता है, जूता दोस्ती निभाता है, जूता खाया जाता है, सम्मान दिलाता है, मेडिसिन है, उसका अपहरण होता है और उसकी सिटीजनशिप भी। क्या बात है, जूते जी आपको सलाम है। एक बात तो आपने महसूस की होगी बहनों भाइयों कि आज प्रोग्राम के जो दो गीत बैक टू बैक हमने आपको सुनवाए, दोनों गीतों ने एक महान शोमैन की याद दिलाई। कौन? वन एंड ओनली राज कपूर। भाई आज उनकी पुण्यतिथि है, अगर उनका थोड़ा सा जिक्र हो जाए। वैसे तो आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया पर बाली भाई का एक अधिकार है और वो चाहते हैं कि वो ही वो करें, लेकिन एक आध गाना भाई जरूर सरका देंगे हम एक दो बातों के साथ। क्योंकि जब राज कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और जो अवार्ड लेते हुए वहीं से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, तो उस स्थिति का जिक्र करना जरूरी है। दिल्ली में वहीं से सीधा उनको राष्ट्रपति भवन से AIIMS ले जाया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हिंदी में कहेंगे। तो साहब वहां कुछ समय तक उनका इलाज चला लेकिन वो कभी उभरे नहीं वहां से। वो फिर जो कहिए कि ऊपर ही चले गए, लेकिन उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आती थी, मैं पढ़ता था और मुझे अब तक नाम याद है डॉक्टर्स के, डॉक्टर सुभाष मनचंदा, डॉक्टर नरेश त्रेहन, भाई जो राज कपूर साहब का इलाज कर रहे थे। लेकिन 2 जून के दिन इस महान शोमैन ने आंखें मूंद ली और जाते जाते भाई अपने गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, संवादों के जरिए और फिल्मों के भाई माध्यम से राज कपूर जो संदेश दे गए उसका जिक्र करना जरूरी है। खैर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। एंड भाई आज मंगलवार के दिन जुड़े रहिएगा मेरे साथ। राज कपूर के साथ साथ और भी कुछ लोगों की पुण्यतिथि है। एक पंडित श्री राम शर्मा, आप जो चिंतन सुनते हैं ना बहनों भाइयों, ये कई चिंतन जो हैं आते हैं श्री राम शर्मा जी की पुस्तक प्रज्ञा पुराण से। अगर आप ले सके ना तो इतने चिंतन मिलेंगे उसमें भाई। ये किताब जो है हरिद्वार से प्रकाशित हुई और बड़ी बड़ी कहानियां, इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स, महापुरुषों के जीवन की कथाएं, वही ऐतिहासिक विवरण भी बहुत कुछ है उसमें। और पंडित श्री राम शर्मा जी की भी आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। राइट, लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स रेट नाउ। गुड मॉर्निंग
1: SBI UK मनी टॉक। सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, your £1 in your pocket today could get you maximum in Indian currency maximum 127.9 rupees। 127.90 rupees का रेट चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी है। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए £75 वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर £1,000। ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर £2,000। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Pass.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a radio.
4: Good morning. ये है लाइका रेडियो नेटवर्क. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए. ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल और हिजबुल्ला में झड़पें जारी हैं. रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं. 5 लोगों की मौत, कई जख्मी. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक हफ्ते में समझौता हो सकता है. मणिपुरी फिल्म बूंग ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जीते 3 अवार्ड. हिजबुल्ला और इसराइल के बीच सीज फायर को लेकर एक अहम समझौता हुआ है. और आरसीबी के बल्लेबाज टिम डेविड आईपीएल 2027 के पहले मैच से सस्पेंड हुए हैं. आईपीएल जीत लिया है भाई आरसीबी ने, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला अब आया है कि अगले साल जो आईपीएल होगा उसके पहले मैच में सस्पेंड रहेंगे टिम डेविड. बेंगलुरु के ये प्लेयर हैं. विस्तार से खबरें. ट्रंप के ऐलान के बावजूद, अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, बिचौलियेपन के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद साउथ लेबनान में झड़पें अब भी जारी हैं. हिजबुल्ला ने कहा कि उसने उत्तरी इसराइल के 2 गांवों के पास इसराइली टैंकों और फौजियों पर हमले किए हैं. दूसरी तरफ इसराइली फौजियों ने कहा है कि उसने लेबनान से दागे गए 2 प्रोजेक्टाइल को रोक दिया है. किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है. भारत से आने वाली खबरों में, दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर के फटने से एक मंजिला मकान गिरा. इसमें कम से कम 4 लोग जख्मी हुए हैं. बताया जा रहा है कि ये हादसा आज सुबह 9:37 पर भारतीय समय के अनुसार हुआ. और वो मकान जब गिरा तो कॉल करने वाले ने बताया कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं. रेस्क्यू टीम गई, बचाव कार्य शुरू हुआ. कुछ लोग जख्मी हुए बताए जाते हैं. अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि छापेमारी फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट अधिनियम से जुड़े एक मामले में की गई है, जिसके तहत ईडी ने तलाशी अभियान चलाया है. अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स पर पक्षपात का इल्जाम लगाया, साइड लेने का, जिसके बाद ईरान ने इस पर रिएक्ट किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान अपनी नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म मान ले और फौज अपने हथियार जमीन पर रख दे और सफेद झंडा लहराकर हार मान ले, तब भी अमेरिकी मीडिया ईरान को विजेता घोषित कर देगा. यानी प्रेस ठीक से इन्फॉर्म नहीं कर रही है. इसके बाद ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए जवाब दिया कि भारत में स्थित ईरानी एम्बेसी ने एक्स पर लिखा है, अगर आप हमारे न्यूक्लियर अधिकार मानते हैं, हर मोर्चे पर जंग सचमुच में खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे इलाके से बाहर निकलते हैं. अगर आप समुद्री नाकाबंदी हटाते हैं, कठोर पाबंदियों को खत्म करते हैं और इस जंग से हुई भारी तबाही का मुआवजा देते हैं, तो हम खुशी से दुनिया को बताएंगे कि आपने एक बड़ी हिस्टोरिकल जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि यह समझौता युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़ा होगा. इतनी सारी शर्तों के साथ भाई लगता है अभी यह समझौता कार्य रूप में नहीं आया है, आना जल्दी नजर भी नहीं आ रहा है. दूसरी तरफ रूस ने कल सोमवार की रात को यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला किया है, जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों जख्मी हुए हैं. यूक्रेन के दिप्रो में 4 लोगों की मौत हुई, 16 जख्मी हुए, जबकि कीव में भी 1 व्यक्ति की मौत और 29 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है. पिछले हफ्ते रूस ने वार्निंग दी थी कि वो निरंतर ये काम करेगा। ये चेतावनी उस ड्रोन हमले के बाद आई थी जो पिछले महीने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके के एक हॉस्टल पर हुआ था, जिसमें 21 लोग मारे गए थे। भारत से आने वाली खबरों में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि 12वीं क्लास की परीक्षा से जुड़ा वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन वाला पोर्टल अब चालू हो चुका है। इसके बाद जरूरी जानकारियां भरनी होंगी और फिर पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप लगातार इसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अमेरिका में ऑपरेशन चेकमेट के तहत लगभग 30 इंडियन सिटीजन्स को अरेस्ट किया गया है। इन पर इल्जाम है कि ये गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, ट्रक ड्राइवर्स के रूप में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। अमेरिका की कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने कल सोमवार को जानकारी दी कि 11 से 15 मई के बीच एरिजोना के यूमा सेक्टर में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने 52 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से 36 लोग सेमी ट्रक चला रहे थे। इनमें से 30 भारत के थे, बाकी अन्य देशों के थे। बाफ्टा अवार्ड जीत चुकी मणिपुरी फिल्म बूंग ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। बताया जा रहा है कि बूंग फिल्म का नाम है बेस्ट डेब्यू फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी जो डायरेक्टर हैं उनको, बेस्ट चाइल्ड एक्टर गुगुन किप गेन के लिए ये अवार्ड जीते हैं। ये फिल्म फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाई गई थी और इसकी डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि ईरान के साथ एक हफ्ते में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता सीज फायर को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़ा होगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि दिन में एक छोटा सा मसला सामने आया था, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत सुलझा लिया। राष्ट्रपति के मुताबिक यह मसला ईरान की नाराजगी से जुड़ा था, जो लेबनान पर हो रहे इसराइली हमलों की वजह से था। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने IPL 2026 का फाइनल मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन इसके बाद टीम के बल्लेबाज टिम डेविड पर एक कार्रवाई हुई है। टीम को IPL 2027 के पहले मैच से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल बात यह हुई कि फाइनल मुकाबले में टिम डेविड ने गुजरात टाइटंस की पारी के 10वें ओवर के दौरान एम्पायर नितिन मेनन की तरफ एक आइस बैग फेंक दिया था। इसे आचार संहिता का लेवल 1 का उल्लंघन माना गया, खिलाफ वर्जी मानी गई कोड ऑफ कंडक्ट की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। एक खबर और, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर को लेकर के एक अहम समझौता हो गया है, ये खबर आ रही है। अमेरिका में लेबनान की एम्बेसी ने बताया है कि हिजबुल्ला की ओर से अमेरिकी प्रस्ताव को मानने की पुष्टि हो गई है और इसमें दोनों तरफ से हमले रोकने की बात मानी गई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते हैं।
3: Like our radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: लौट आइए अब वापस संगीत की ओर। Very good morning. This is Like a Gold Radio and Like a Radio.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ हॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई, मौसम खूबसूरत है, बड़ा हंसी मुहूर्त है, छुट्टियों पर जाइए, मौज मनाइए, मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स विद दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. South Hall Travel. Visit South Hall Travel or call 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
4: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
5: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी,
4: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk.
6: सिटी बॉन्ड ट्रेवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026.
7: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर.
6: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर.
7: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
6: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया. विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड, लेस्टर, और कॉल सिटी बॉन्ड ट्रेवल ऑन 0162-167-225.
8: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद.
9: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
8: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus, and all independent stores nationwide.
1: The timeless soul of Qualy returns to the stage.
2: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
1: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
2: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances, and the modern revival of the Mehfil experience.
1: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
2: On Sunday, the 7th of June at Hackney Empire.
1: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
4: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी
5: हमारे पति हमको छोड़ दिए
4: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया
5: दिल तो टूट पे किया
4: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी
6: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती
4: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 BT 394
7: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
9: मनोरंजन विद रवि शर्मा
10: वेरी गुड मॉर्निंग और लीजिए सुनिए मुकेश लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये गीत जो हमें लेकर के चलेगा 11 बजे की खबरों तक ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम है

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के इस दूसरे भाग में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहनों भाइयों, इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। वक्त हो गया है चिंतन का। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं साउथहॉल से पीयूष सिदानी साहब का भेजा आलेख। पीयूष सिदानी साहब लिखते हैं कि जिंदगी में भोग से ज्यादा त्याग में सुख होता है, यानी आप किसी चीजों का उपयोग करें अपने लिए, इसकी बजाय अगर आप उसी चीज को किसी जरूरतमंद के लिए त्याग करें तो वो भोग से ज्यादा सुख देता है। खुद इस्तेमाल से दूसरे को दिया जाने वाला सुख। देखिए, अगर आप कोई चीज भोजन ही ले लीजिए, आपने खाया, कोई अच्छा कपड़ा आपने पहना, उस समय के लिए सुख देगा जब तक आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो त्याग किया, किसी को दिया, वो तो देर तक आपको एक मन की संतुष्टि और आनंद पहुंचाता रहेगा। क्वालिटी फूड्स वाले हमारे रेगुलर लिसनर और कंट्रीब्यूटर भाई पीयूष सिदानी भाई लिखते हैं कि आपने संत नामदेव का नाम तो सुना होगा, बड़े त्यागी बैरागी महात्मा थे और वो अपना भोजन खुद पकाया करते थे। भिक्षा में जो आटा, जो सब्जी, जो कुछ भी मिल जाता, दो ईंटें जोड़ करके आग जलाते, अपने बर्तन साथ रखते थे, भोजन बनाते और फिर प्रसाद की तरह से भगवान को भोग लगा के फिर उसका उपभोग करते, खाते। एक बार 3 दिन तक उनका उपवास चला, फिर कहीं से भिक्षा में उनको आटा मिला। एक गृहिणी को, एक महिला को जब पता लगा कि महात्मा जी 3 दिन से उपवास पर हैं, तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप मेरा बनाया हुआ भोजन तो नहीं खाते, आप खुद बनाते हैं, इसलिए लीजिए। उन्होंने आटा भी, सब्जी भी, नमक मसाले सब चीजें दी महात्मा जी को। और भाई उनके घर के बाहर ही थोड़ी दूरी पर उन्होंने 2 ईंटें जोड़ करके चूल्हा बनाया, टेम्परेरी भोजन तैयार किया। बहुत जोरों से भूख लगी थी स्वामी जी को, लेकिन जैसे ही भोजन तैयार करके भगवान को अर्पण करके वो भोजन खाने वाले ही थे कि एक भूखा बच्चा एक टक भोजन की थाली की तरफ देख रहा था। महात्मा जी ने ग्रास तो तोड़ा पर खाया नहीं, बच्चे से पूछा, भूख लगी है? बच्चे ने गर्दन हिलाई, हाँ। अरे तू बोलते क्यों नहीं, ये लो खाओ, भोग लगाओ। महाराज जी को लगा कि बच्चा नहीं, स्वयं भगवान उसके पास भोग लगाने आए हैं। भोजन की थाली बच्चे की तरफ सरका दी। 3 दिन से उपवास चल रहा था महाराज जी का, लेकिन संत स्वभाव ही ऐसा होता है, बच्चे की आंखों में चमक आ गई। मैले कुचले हाथों से वो खाने लगा तो पहले उनके हाथ धुलवाए बच्चे के, और उसके बाद भोजन बड़े प्रेम से खिलाया। सारा भोजन बच्चा डकार गया। अब वो महिला जिसने आटा दिया था वो देख रही थी, घर से निकल के आई चमचमाती हुई, महाराज जी ये क्या किया?
1: चिंतन, चिंतन।
0: 3 दिन से आपका व्रत चल रहा था, उपवास कर रहे थे, मैंने आपके लिए दिया था ये भोजन सामग्री का सामान। संत मुस्कुराए और कहने लगे, देखो देवी, भोजन का काम है भूख मिटाना, इस पेट की मिटाई या उस पेट की, संतुष्टि मुझे ज्यादा मिली है उस बच्चे को खिलाकर। विश्वास रखो, खुद खाकर मुझे उतना सुख नहीं मिलना था जितना सुख उसे खिला के मुझे मिला है। महिला ने कहा, आप संतों की अटपटी बातें हमारी समझ में नहीं आती। मैं और सामान लाती हूँ, प्लीज अपने लिए भोजन बनाइए। महात्मा कहते हैं मुझे तो तृप्ति हो गई, बच्चे ने भोजन जिस प्रेम से खाया, एक एक कोर एक एक निवाला, जैसे भगवान ने भोग लगाया, बस मैं तो तृप्त हो गया। बहन भाइयों, यकीन मानिए, कभी आजमा के देखिए, भोग से ज्यादा त्याग में बहुत सुख होता है। किसी के आंसू पोंछ कर देखिए, आपको सुख मिलेगा। किसी भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके देखिए, मजबूर को, विवश को, बेसहारा को, बीमार को सहारा देके देखिए, आपको लगेगा कि आपको सहारा दिया गया है भगवान की ओर से।

थॉट फॉर द डे, आज का विचार, आज का चिंतन आप सुन रहे थे, जिसके लिए आलेख हमें साउथ हॉल से भिजवाया पीयूष सिदानी साहब ने। विपुल सिदानी, शाम, क्रिस, उन सब की ओर से भाई पीयूष भाई ने बहुत पहले ये चिंतन भेजा था, आज हमने प्रोग्राम में शामिल किया और आज धन्यवाद हम उनकी जगह विपुल भाई को और सबको जो क्वालिटी फूड्स का स्टाफ है जो सुन रहे हैं इस समय, भाई सबको सुनवा भी रहे हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनमें क्रिस, श्याम और मार्टिन, रूपम, प्रियंका, शांति और अशोक भाई, आपका भी धन्यवाद, और सारे स्टाफ को जो कितने ही लोगों को वहाँ रेडियो ऑन रख करके प्रोग्राम सुनवाते हैं, चिंतन भिजवाते हैं, तो विपुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, पीयूष जी को प्रणाम। और आज का चिंतन याद दिला दूं आपको बहन भाइयों, रोज की तरह से 11 बजे की खबरों के बाद हमने शामिल किया गीत जो सुनवाया, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म अनाड़ी, 1959 की फिल्म थी। आज राज कपूर साहब को भी हम याद कर रहे हैं।

0: पर सिदानी परिवार को जाता है क्रेडिट में उन्होंने भिजवाया। बहना भाइयों ये फिर याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप मनोरंजन में सुनते हैं। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK याद दिला रहे हैं सही समय है, अच्छा रेट है भाई, पैसे भिजवाइए। और जून के महीने में अगर आप ये काम करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी हैं। फॉर वन पाउंड इन योर पॉकेट यू कुड गेट मैक्सिमम 127.9 इंडियन रुपीज, 127 रुपए और 90 पैसे। साथ में याद दिला रहे हैं सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 पाउंड वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड, ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Leica Radio.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स।
5: On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza hosts a special on menopause featuring special guests.
6: So I've been navigating menopause on and off since January 2024, and it's happened suddenly. So I haven't had the kind of build up. It's suddenly. So it's been a journey, and now I'm navigating menopause without any HRT or anything, any medications.
5: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
7: Leica Radio.
5: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio, with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
8: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: ये है Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क पर गोल्डन गीतों का खजाना लुटाया जा रहा है और अब आ रहा है लता जी की आवाज में ये गीत, टेकन फ्रॉम द फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम.

लौट आइए संगीत की तरफ। पहेलियां बुझाते हैं, सवाल जवाब गीतों में, बातों में, संवादों में। और भन भाइयों, जिस दौर में राज कपूर साहब सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, उसी जमाने में एक जुबली कुमार नाम से हीरो पर्दे पर आते थे, छा जाते थे। ये गीत उनकी याद दिलाएगा।

सचिन देव बर्मन के संगीत पर किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। एंड दिस सॉन्ग वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म प्रेम नगर, 1974 की फिल्म। और बहनों भाइयों, उस जमाने में राजेश खन्ना मेगा स्टार होते थे। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, चोटी के सितारे, अच्छी क्या कहते हैं भाई, कहानी, म्यूजिक कंपोजिशंस भी बहुत बढ़िया, गाना एक से बढ़कर एक। ये गीत हमें ले आया है 12 बजे की खबरों के नजदीक, और वही खबरों के उस पार भी हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी।

बहुत ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, लेकिन भाई थोड़े से साजिंदों के साथ बढ़िया कंपोजिशन, ये इशारा करता है कि भाई ये धुन तो जरूर किसने बनाई होगी। ऑस्कर में भाई चर्चित रहे संगीतकार A.R. रहमान। बॉम्बे फिल्म का गीत था ये, और इससे पहले प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी दौर का आगाज हमने किया था जिस गीत से, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, किशोरदा की आवाज में। भाई ये गीत सुनवाते हुए याद आ रहा है हमें कि आज मणिरत्नम साहब का जन्मदिन है, 1956 में जन्मे थे। कैसी कैसी फिल्में दी उन्होंने, रोजा, बॉम्बे, दिल से। मणिरत्नम, गोपाला रत्नम सुब्रमण्यम, दैट्स हिज नेम, और बड़े मशहूर भाई साउथ में तो है ही, नॉर्थ में भी उनकी फिल्में जो है काफी कामयाब रही हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको बता दें कि मणिरत्नम के साथ साथ आज शत्रुपुत्री, मेरा मतलब हमारे मित्र पुत्री सोनाक्षी सिन्हा का भी जन्मदिन है, 1987 में जन्मी थी। मैंने बताया था एक बार उसकी एक फिल्म भाई हमने एक होटल में देखी, होटल का सिनेमा हॉल था, प्राइवेट सिनेमा हॉल, शत्रुघ्न सिन्हा और रवि शर्मा दो ही बैठे थे पूरे हॉल में, स्पेशल स्क्रीनिंग करवा के भाई बेटी की फिल्म देखी, अच्छा लगा। सोनाक्षी सिन्हा कितना बरसनी थई गई छे दीकरी, मने खबर न थी, माइंड योर बिजनेस, हर बात को जानना चाहते हैं, क्या मतलब है आपका। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू सोनाक्षी। भाई इसके अलावा आज इलियास राजा का भी जन्मदिन पड़ता है, 1943 में जन्मे थे, तमिल इंडस्ट्री के संगीतकार रहे हैं, 60,000 गीत, 1,000 फिल्में, बड़ा नाम है उनका भी इलियास राजा। और आप भूले नहीं होंगे नीतीश भारद्वाज को, अरे वो जो महाभारत में श्री कृष्ण बन के आए थे, फिर उनके बाद उसके बाद उन्होंने मराठी फिल्म भी की, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की, और यहाँ लंदन में आके भी रहे, एक दो शो भी किए, भाई हमारे साथ बड़े सहयोगी रहे, मोनिशा पाटिल के साथ विवाह करके सेटल हो रहे थे, लेकिन आजकल फिर गुमनामी के अंधेरों में खो गए। सुना है कि किसी तीर्थ पर रहते एकदम सात्विक जीवन जी रहे हैं। नीतीश भारद्वाज, मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, 1963 में जन्मे थे। भाई आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बॉम्बे फिल्म का गीत सुनवाते हुए मणिरत्नम की याद आई, और अब आगे बढ़ते हैं, याद दिला दूं आपको कि दोपहर बाद एक

0: likeagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहनों भाइयों, आप जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम क्या है? वेल, नाम सुनकर तो नहीं पहचान पाएंगे आप, हाँ उनका जो टाइटल है, जिस नाम से वो लिखते रहे हैं वो बताऊंगा तो पहचान पाएंगे। नाम तो है उनका श्याम लाल बाबू राय, कल बताया था मैंने। लेकिन साहब, जिस नाम से उन्होंने ख्याति प्राप्त की, गीत लिखे, वो नाम है उनका इंदीवर। एक जनवरी 1924 में जन्मे थे श्यामलाल, झांसी में, वही शहर जो झांसी की रानी वाला। 27 फरवरी 1997 में उनका निधन हुआ मुंबई में, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं भाई बहुत सारे गीत, 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए हजारों गीत लिखे उन्होंने, और आज लोग बड़े चाव से सुनते हैं उन गीतों को। उनमें से एक ये भी है।

0: प्यार तो हमारा भी अमर रहेगा भाई, याद करेगा जहान। एक लंबी दास्तां है हमारे आपकी रिश्तों की, और भाई वो आपके संदेशों में झलकती है। वेल निर्मला जी, आपका संदेश मिल गया है, आपको गीत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और कांडू जी, आपका संदेश आया है, आपको भी गीत बहुत भाया, थैंक यू वेरी मच। इट इज इलियास राजा, नॉट इलियास, भाई क्या फर्क रह गया मेरे समझ में नहीं आया। इलायास या प्रोनाउंसिएशन के लिए, क्योंकि साउथ के हैं वो संगीतकार, कहते हैं इट इज इलायास राजा, नॉट इलियास राजा। हिज फैंस मे गेट अपसेट, वाई भाई? क्योंकि अंग्रेज सारे ही हमारे नाम बिगाड़ के बोलते हैं। देखो, जिस भाषा से हम परिचित नहीं हैं, अगर आपने नाम का प्रोनाउंसिएशन लिखा है बोल के बताएं तो पता लगता है, लेकिन आपने स्पेलिंग इस तरह से लिखी है कि वो इलियास नहीं इलायास है। खैर भाई, उसका मतलब भी बता दें तो और अच्छा लगेगा, थैंक यू वेरी मच। हिज बर्थडे इज टुमारो ऑन 3rd of June, ही सेज नॉट टुडे। भाई हम क्या करते हैं कि हम ढूंढते हैं किताबों में या जहां भी से हमें मिल जाए जानकारी, तो हम एडवांस में कह देते हैं उन्हें, यू डोंट माइंड करेक्टिंग, क्या पता भाई बाप आप करेक्ट कर रहे हैं कि करप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कल है क्योंकि तो हम एडवांस में कह देते हैं, आज है तो कह ही दिया है, बाकी हमारे बाली भाई से हम कन्फर्म करेंगे क्योंकि फिल्मी दुनिया के वो ज्यादा नजदीक हैं। और आपके अनुसार इलायास इलाया राजा, नॉट इलियास, भाई आपका जो लिखा हुआ है उसमें एस उड़ा दिया है आपने, तो ठीक है जो भी है, पर वो हमारे जो साथी वो इसी नाम से बुलाते रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं अगर गलत है तो। फारूक मोहम्मद, विजय सटन में, और निर्मला जी के अलावा वत्सला जी, आपको भी गीत संगीत और चिंतन पसंद आया। मानसी, थैंक यू। हंसा वोरा, नरेंद्र पांचाल और रानी स्लाव में, और मधु आंटी जी, जगदीश, अनिल सोनी वियाना में, जसू, ललित छत्रिशा, ललित भाई क्षमा चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो आपके सरनेम का, ललित छत्रिशाह यही लिखा है, कहती है कि आज का चिंतन और उसके साथ का गीत आपको बहुत पसंद आया। फतेह पटेल, नरेंद्र, थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र लगता है आप पहली बार संदेश भेज रहे हैं, या पहले भेजा होगा तो देर बाद भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको भी अच्छा लगा आज का चिंतन। और कंचन जी, थैंक यू। सत्यनारायण सैनी भारत से संदेश भेज रहे हैं। रंजन और ये अर्जुन जी, रागिनी, महेंद्र, राजीव पटेल शर्मा मेडस्टोन से, और पम्मी सिंह, हरविंदर जी आप चिंतन की जिज्ञासु हैं, सुनीता शर्मा, अरुणा, भूपेंद्र पटेल, नीला चौधरी जी, महेंद्र बजारिया और जैस्मीन, थैंक यू वेरी मच जैस्मीन। भारत गंगाराम, जहीर खान कराची से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे नाम बाकी हैं भाई, एक हमारे देशराज बैसन साहब हैं, वो चिंतन के लिए कहानी भेज रहे हैं, कभी फिर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर संदेश को हम सर आंखों से लगाते हैं। और भाई अगर नाम छूट जाए किसी का तो उनसे माफी भी चाहते हैं।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आपके गीतों में मौसम का इशारा होना चाहिए। भाई पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी, अब राहत मिली है, ऐसे मौसम का स्वागत है।

0: आया सावन झूम के भाई, बाहर देखा जा सकता है सावन झूम के आया हुआ है आज भाई। अभी भी वो अपने कंडू साहब या कंदू, माफी चाहूंगा, जहां इलायराजा का नाम मैंने अगर गलत बोला है तो वो तो ठीक है, लेकिन आपका नाम ठीक है कि नहीं ये भी बता देना कि मैं KANDU कैंडू बोलूं या कंदू बोलूं। साउथ इंडियन नामों से बहुत करीब से हम परिचित नहीं हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। और ये बात सही है कि उनका जन्मदिन 3 जून को है भाई, कल हमने एडवांस में आज उनको हैप्पी बर्थडे कह दिया, लेकिन एक बात तो बताना भूल गए कि इलायराजा जो हैं वो पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं भारत सरकार की ओर से, और आज वो हो गए हैं, मतलब कल हो जाएंगे 82 बरस के, और भारत क्योंकि कुछ घंटे आगे है तो भाई हम आज भी उन्हें हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। तो और भी किसी का जन्मदिन अगर आज है तो मेरी मेरी हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: एक बात याद दिला दी आपको भाई के लेजेंडरी गायक कलाकार हरी हरन आ रहे हैं यूके, सोल इंडिया कॉन्सर्ट लेकर के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 4 जुलाई शनिवार को परफॉर्म करेंगे। southbankcentral.co.uk पर टिकट्स अवेलेबल हैं, इंतजाम कर लीजिए। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

एक कुंवारी एक कुंवारा 1973 की फिल्म, उसका गीत सुना आपने आशा जी और किशोर दा की आवाजों में। साउथ ऑल ट्रेवल का पैगाम आपके नाम भाई, इन गर्मियों में छुट्टियों का मजा उठाइए, आनंद लीजिए, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से भी ज्यादा का भरोसा उनका सैलानियों के मन में, और वो ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के विजेता भी हैं। विजिट साउथ ऑल ट्रेवल और या उन्हें फोन कीजिए 0208574840।

0: गलियों में क्यों पुकारते हो भाई, दिल में झांक के देखो। साजन वहां बैठा है। प्रतिभा जी थैंक यू वेरी मच, आपका संदेश मिला हितेश भारत से, हमें लगातार याद करते हैं नलिनी हैरो में, थैंक यू वेरी मच। भाई सभी श्रोताओं को धन्यवाद दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, ये गीत आप तक पहुंचा रहे थे
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: उनके रेट्स नोट कीजिए भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.35 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 375 एग्जैक्टली, श्रीलंकन रुपए 447.56, बांग्लादेशी टका 165.37 एंड अफगानी 84.44।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Gold is sold at the rate of... क्या भाव है? कुछ ऊपर नीचे हुआ? नहीं, 108.13 पाउंड्स पर ग्राम, 108 पाउंड और 13 पेंस का एक ग्राम।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 carat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 2 for 5, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
2: While stocks last.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 0208574-8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ માં દર્શન નો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રા માં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટુર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના. મંત્રા હોલિડેઝ, કોલ કરો 02037736333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા?
11: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
12: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और लीजिए बहन भाई, अब कार्यक्रम को समेटते हैं. जाते जाते एक बार फिर से फिल्म इतिहास में, इंडियन फिल्मी इंडस्ट्री में भाई उस महान शोमैन को याद करें जो क्या कहते हैं, भारतीय सिनेमा के किस रूप में कहें आपको, सबसे बड़े शोमैन तो माने ही जाते थे, लेकिन उसे भारतीय सिनेमा का, उन्हें चार्ली चैपलिन भी कहा जाता था. और राज कपूर साहब की आज पुण्यतिथि है. सो राज कपूर साहब कहते हैं संघर्ष तो उन्होंने बहुत बचपन से ही शुरू कर दिया था. हालांकि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब पहले से फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन राज कपूर को फिर भी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि पिता ने कहा कि मैं कोई मदद नहीं करूंगा, संघर्ष करके खुद आगे बढ़ो. केदार शर्मा को सौंप दिया था, उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर थे भाई. और कहते हैं केदार शर्मा ने एक बार तो राज कपूर के गाल पर थप्पड़ भी जड़ दिया था. भाई ऐसे ही सीखते हैं, गिरते पड़ते उठते संभलते. तो राज कपूर साहब ने जो एक फिल्म बनाई थी आग, जब फिल्म बना रहे थे सबने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे कि भाई अगर वो आग फिल्म बना रहे तो कह दो उन्हें कि एक सिनेमा हॉल भी बनवा ले, ताकि आग लगे तो उन्हीं के हॉल में लगे. उड़ाओ मजाक उड़ाओ. उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ये कलाकार दुनिया भर में मशहूर होगा, खासकर रशिया में भाई, और भी कई देशों में उनकी फिल्में सुपरहिट रही, भारत में तो चली ही. राज कपूर साहब को मैं बहुत क्या कहते हैं कि फॉलो कर रहा था उस समय से जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा था. राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट सबको अवार्ड दे रहे थे भाई, और दूसरे जो अवार्ड थे उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई, तो राज कपूर अपनी कुर्सी से नहीं उठे. उनके हाथ कांप रहे थे, नाखून नीले पड़ रहे थे. लोगों ने सोचा ये क्या हुआ, नाम उनका दोबारा से अनाउंस हुआ, लेकिन वो अवार्ड लेने के लिए प्रेसिडेंट की ओर नहीं बढ़े. छोटा सा मतलब एक दो स्टेप ही ऊपर चढ़ना था मंच पर, राज कपूर नहीं ले तो स्वयं प्रेसिडेंट जो है दो कदम नीचे उतर के उनके पास आए. पर तब तक जो है राज कपूर साहब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कमजोर हो गए, उठ पाने में असमर्थ हैं. अवार्ड तो उन्हें मिला, लेकिन वहां से सीधे उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, इलाज चला. लेकिन साहब 2 जून 1988 में उसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में राज कपूर साहब ने अंतिम सांस ली. कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे वो भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा. लगा नहीं कि राज कपूर चले गए, राज कपूर हैं, राज कपूर रहेंगे. कपूर परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा है, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने जाके मुलाकात की. कलाकार कहाँ जाते हैं, निवास करते हैं दिलों में. आज भी सिनेमा हॉल्स में, हमारे यहाँ लगी थी उनकी एक फिल्म हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरा नाम जोकर. अरे साहब बैठने को जगह नहीं मिली, तो जिसे जहाँ बैठा सके, हमारी थिएटर की काफ़ी कैपेसिटी है, ऑडिटोरियम है, हम लोग तो वहाँ नाटक, ड्रामे, मोनो एक्टिंग्स, म्यूजिक के कॉन्सर्ट करते हैं, पर वहाँ राज कपूर साहब की ये फिल्म दोबारा आई थी, पहली बार फ्लॉप हो गई थी, दोबारा लोगों ने सिनेमा हॉल में देखी। उस महान शोमैन को अंतिम प्रणाम करते हुए बहनों भाइयों मैं इजाजत लेता हूँ। बाली भाई एंटर कर रहे हैं, वो तो मुझसे भी ज्यादा बहुत सारी सामग्री जुटा कर लाएंगे, उनका इंतजार कीजिए। रवि शर्मा को इजाजत दीजिए, हैव ए सुपर्ब डे, बाय बाय।
13: ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई तो हराएगा।
1: Across the Midlands on DAB Digital Radio, this is Leica Radio, a part of the Leica Radio Network.
14: The top stories this hour. Prosecutors have revealed the former chief executive of the SNP used party funds to buy a motorhome, which he only ever drove 4 miles, as well as luxury goods and a robot lawnmower. Peter Murrell appeared in the High Court in Edinburgh this morning after pleading guilty to embezzling over £400,000. The Sunday Times' John Boothman says it was a sophisticated operation.
15: We had created false invoices. Some of the original invoices were found in his house, creating a trail to disguise his crime. He passed off that £3,200 robot lawnmower as legal fees.
14: He'll be sentenced later this month. Investigators have confirmed they'll meet the family of murder victim Henry Nowak as a watchdog looks into his treatment by police. The student was arrested as he lay dying after being stabbed in Southampton in December. Reform leader Nigel Farage says people should respond with pure cold rage over the incident, claiming it's anti-white prejudice.
16: This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away.
14: Vikram Digwa was jailed for life yesterday. Officials in Ukraine say at least 18 people have died after a series of overnight attacks by Russia. Dozens of people are injured and authorities fear people are trapped in the rubble of collapsed apartment buildings. There's a warning of widespread travel disruption during strikes by drivers on the London Underground. Union members are walking out today and on Thursday. The Bank of England says mortgage approvals reached their highest level for more than a year in April. Just under 66,000 house purchases were approved. And Scotland legend Sir Kenny Dalglish has confirmed he's undergoing treatment for cancer. He says he wanted to keep the news private, but he accidentally posted about it on social media. Dalglish's former club Liverpool say they're sending him support and love. From Sky News, I'm Imani Rana.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
17: And a good afternoon to you. Looking at the weather, it's 19 Celsius in London and 18 Celsius in the Midlands. Now, in London, it's the weather is a bit different than the Midlands. This afternoon, any lingering rain will clear, allowing for some sunny spells as scattered showers develop, some heavy and thundery. And in the Midlands, any lingering rain will clear. And then it's going to be some heavy and thundery showers.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Bali Brambat.
17: Thank you, Ravi Sharma ji, the ultimate showman. Parda gire ya uthe, parwa nahi hoti us fankar ko jo sadiyon tak apni adaon se zinda rakhta hai bazaar ko. Raj Kapoor.
18: Leica Radio. Leica Radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
19: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.

0: Yes, the background music is also suitable to today's subject. उन्होंने कहा छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम गमे दुनिया को हंसा कर झेल लेती है नजर उनकी गमे दुनिया को हंसा कर झेल लेती है नजर उनकी अजीब एक फलसफा है मस्तानी रहबर है उनकी ना कोई रास्ता अपना ना कोई हम सफर अपना मगर हर दिल को अपना कर गुजरती है नजर उनकी। राज कपूर एक बड़ा नाम द शोमैन। अगर किसी को हम नाम जिक्र करें राज कपूर आई गेट कमेंट्स लाइक द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा या तो कहेंगे चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया या तो कहेंगे द ग्रेटेस्ट एक्टर या तो कहेंगे द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर। किसी ने इस इंसान की बुराई नहीं की। हाँ एक जमाना था ही हैज अप्स एंड डाउन्स ही हैड अप्स एंड डाउन्स फ्लॉप फिल्में भी थी हिट फिल्में भी थी। लोग कहते थे अब उसका टाइम आ गया है इट इज़ गुड बाय टू राज कपूर। ऐसी ऐसी भी बातें हुई थी लेकिन आज की तारीख में ऑन द 38th डेथ एनिवर्सरी ऑफ राज कपूर सब सलाम करते हैं सब झुककर बात करते हैं। 14 दिसंबर 1924 पेशावर एंड ही पास्ड अवे ऑन 2 जून 1988 इन न्यू दिल्ली। एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर विद म्यूजिकल सेंस एक्टिव फ्रॉम 1935 टू 1988। अब सोचो 63 साल की उम्र जिसमें से 53 साल इन्होंने इसी में गुजार दिए। इनकी तो पूरी लाइफ 10 साल की उम्र से इन द 53 ईयर्स ही गॉट 3 नेशनल अवार्ड्स 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स अ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। जब इनको पद्म भूषण मिला इन 1971 इनके पापा जी पृथ्वीराज कपूर जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था दैट वाज इन 1971। 16 साल के बाद जब राज कपूर जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 1987 में अ ईयर बिफोर हिज डेथ ही आल्सो गॉट इट इट वाज वन ईयर बिफोर हिज डेथ। नाउ मैं अगर इनकी फैमिली के बारे में बताना चाहूँ या तो इनके बचपन की बातें मैं करना चाहूँ तो आप कहेंगे कोई नई बात नहीं कर रहे सबको जबानी मालूम है। सो वाई डोंट वी फोकस ऑन द सॉन्ग्स विल फोकस ऑन द सॉन्ग्स। सेकेंड आवर में जब लोगों को मालूम था कि 80% या 90% इनकी फिल्मों का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने ही किया था शंकर जयकिशन वर द रेगुलर्स। लेकिन मैं आपको कुछ गाने सुनाऊंगा ऑफ अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने संगीत दिया राज कपूर जी के लिए राइटर्स भी अलग अलग और म्यूजिक डायरेक्टर के अलावा आवाजें भी अलग अलग क्योंकि मुकेश वॉज द वॉइस ऑफ राज कपूर। लेकिन मैं आपको गाने सुनाऊंगा इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब मुकेश जी तो थे ही देन रफ़ी साहब के साथ तलत महमूद ऐसे ऐसे कुछ लोग लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स वर बाय मुकेश जी बट विद अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स देन शंकर जयकिशन। That is in the second hour. थोड़ा सा आपको मैं nostalgic mood में ले जाऊंगा and very sober songs. Are you ready for me? I'm ready for you. Let's remember the great man, Raj Kapoor.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.9 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. Before एंड ऑफ जून, अब तो शुरुआत है जून की, सो यू गॉट अ लॉट ऑफ डेज टू डू दिस बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए 75 pound वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds. ऑल्सो ए 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul

0: फिल्म है आह 1953 की.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, that was produced by Raj Kapoor and film Aah thi. Raj Kapoor, Nargis, Pran, who doesn't know this movie? We've all seen it. And beautifully scored by none other than Shankar Jaikishan. Shankar Jaikishan ji ne most of the films, jitni bhi inki thi filmein, usme sangeet inhone diya tha. Shailendra ne lyrics likhi thi is gaane ke liye. And aage jaate hue main itna hi kahunga ki inki career ke bare mein agar 10 saal ki umr mein as a child inqilab film mein inhone एक छोटा सा चाइल्ड रोल किया था एंड देन 23 साल की उम्र में दैट वाज 13 इयर्स लेटर एज अ लीड इन नील कमल दैट वाज अ डेब्यू ऑफ मधुबाला जी हाँ मधुबाला के साथ दो तीन फिल्में और भी की थी इन्होंने एंड 24 साल की एक साल के बाद एस्टैब्लिश्ड आर के फिल्म्स जिन्होंने कितनी सारी फिल्में प्रोड्यूस की 25 साल की उम्र में इन्होंने एक्टिंग की थी अंदाज फिल्म में 1949 विद दिलीप कुमार एंड नरगिस मेजर अचीवमेंट दैट वाज अगर चार्ली चैपलिन लोग बोलते थे इनको दोज वर द फिल्म्स आवारा 1951 की आह 1953 श्री 420 1955 जागते रहो 1956 इसमें चार्ली चैपलिन का पूरा टच है इनका फिर 1960 में जब 36 साल की उम्र थी इनकी जिस देश में गंगा बहती है वॉज अ सुपर डुपर हिट इट वॉज डायरेक्टेड बाई हिज लॉन्ग टाइम सिनेमाटोग्राफर राधु कर्माकर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फिल्म एंड देन ही वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर फॉर फिल्म आग विद नरगिस 1948 में जब वो 24 साल के थे एंड एक क्या था दूसरा विद नरगिस कामिनी कौशल जी हाँ कामिनी कौशल भी थी दैट्स राइट एंड गाना भी उसमें एक बड़ा खूबसूरत गाना है कामिनी कौशल जी के साथ अमंगस्ट मैनी फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम टू फिल्म्स वेंट टू कैन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आवारा थी बूट पॉलिश थी 1951 की आवारा एंड बूट पॉलिश 1954 की एंड हिज परफॉर्मेंस इन आवारा हैज बीन एंटर्ड इनटू द टॉप 10 ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा आवारा 1951 फिर इनकी प्रोडक्शन जो थी उसमें तो वो प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर ही रहे थे लेकिन ही वॉज सो पॉपुलर एंड सच अ ग्रेट एक्टर सच अ शोमैन दैट आउटसाइड हिज होम प्रोडक्शन ही ऑल्सो एक्टेड इन अदर प्रोडक्शंस लाइक दास्तान फिल्म थी फिर अनहोनी चोरी चोरी चोरी चोरी पीपल ऑलवेज लुक एट द फिल्म एंड थिंक के राज कपूर की फिल्म है लेकिन चोरी चोरी वॉज नॉट हिज फिल्म And then Anadi, that was Hrishikesh Mukherjee, who was the director of Anadi. And then Do Ustad, Chhaliya, that was Manmohan Desai, Chhaliya, jisme Kalyanji Anandji ne sangeet diya tha. Dil Hi To Hai, Dulha Dulhan, Around the World, Sapno Ka Saudagar, aisi aisi filmon mein inhone kirdar nibhaye the which were out of his production. हम याद कर रहे हैं नन अदर देन राज कपूर सृष्टिनाथ रणबीर राज कपूर
1: इट्स समर ऑन द लाइकर रेडियो नेटवर्क LYCA दिस इज लाइकर Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons from Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.

0: Yes, Chori Chori, out of his production.
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
0: इस गाने में लता जी ने जो हाई पिच सिंगिंग किया था, राज कपूर जी वॉज सो हैप्पी. ही गॉट हर टू सिंग सो मैनी मोर सॉन्ग्स. इनके साथ प्यार भी था, झगड़ा भी था. जब संगम फिल्म का जो गाना था जिसमें मैं का करूँ राम बूढ़ा मिल गया, लता जी ने कहा कि थोड़ा वल्गर गाना है लेकिन शूटिंग कैसे होगी. उन्होंने कहा शूटिंग में कुछ वल्गैरिटी नहीं होगी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा जैसे वैजयंती माला ने टाइट स्लैक्स पहने थे, उस जमाने में इट यूज टू बी वल्गर.

जी हाँ, आशीष जी ने कहा, आई रियली एडमायर द डिटेल्स यू हैव बीन प्रोवाइडिंग फॉर राज कपूर. द फिल्म्स यू आर रिमाइंडिंग अस आर सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. लॉन्ग मे कंटिन्यू द एफर्ट्स यू पुट इन टू एंटरटेन अस विद द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज. सैल्यूट टू यू सर. थैंक यू आशीष देसाई. आई सैल्यूट यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. यू मेक अस, यू ब्रेक अस.

0: Rasmalai, Motichur Laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Laika Radio.
2: And I got news for you. The legendary Hariharan. Legendary Hariharan returns to the UK for Soul India at Royal Festival Hall, London, Saturday, 4th July. Tickets at southbankcentre.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. And the show is going to be hosted by Beena Mistry. And now we have Atif Aslam, who returns to the UK for a special one-off concert at the O2 London on Sunday, 14th of June. Tickets are available from AXS. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
2: मोहम्मद रफी और सुरैया, फिल्म है दास्तान. संगीत है नौशाद का, गाना लिखा है शकील बदायूनी ने.

फिल्म है आशियाना 1952 की, संगीत है मदन मोहन का, कैन बिलीव राज कपूर के पे पिक्चराइज हुआ था। एंड ये संगीत है रोशन का, फिल्म दिल ही

0: दुनिया के गमों को हंसाकर भुला दिया जिसने, दुनिया के गमों को हंसाकर भुला दिया जिसने, जिंदगी को जीने का एक नया फलसफा सिखा दिया उसने, राज कपूर। फिल्म है जागते रहो, संगीत है सलील चौधरी का। वी आर रिमेम्बरिंग राज कपूर जी ऑन हिज 38th डेथ एनिवर्सरी। यस द शोमैन।
1: रंगी को नारंगी कहें

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो.
1: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
2: Relax, I've booked the Uber already.
1: How? My roaming isn't even working yet.
2: I switched to Simsy before we left London.
1: Simsy? Since when are you the tech expert?
2: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे ज्या मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
9: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
10: जगदात्री
9: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है
10: माला ले आना लाइया जी
9: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है
11: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन
9: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप वो है जगधात्री देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 BT 394
0: Liker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. This is Liker Radio, part of the Liker Radio Network. Liker Gold is the UK's first Asian retro music station. Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Liker Radio mobile app. Of the week is brought to you by our new podcast, Liker Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
1: अरे कहाँ हो तुम?
4: हो आलो आलो।
3: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
5: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
0: Yeah, like a gold.

0: वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
3: सोचता हूं कि वो कितने मासूम.
4: Studio 2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
5: New hits on Leica Radio.

0: लेके एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से।
6: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE 392.
7: Presented by South Hall Travel, powered by Tata Tea Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
8: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
9: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
10: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS at Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
4: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie, results don't wait. Visit heartyhanks.com now. You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
2: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: listen to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
0: Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
2: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
3: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
4: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
5: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
6: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
5: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: कार्डिफ, गेट रेडी फॉर द टेस्ट ऑफ मुंबई।
8: SKVP opens from the 30th of May at 111 Queen Street, Cardiff, bringing authentic Indian street food and big flavour to the heart of the city. From your favourite Mumbai-style bites, find it all at SKVP Cardiff. Visit SKVP 111 Queen Street, Cardiff.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
11: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
12: LemFi means quicker and safe way to send money.
13: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
12: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
13: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
14: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
15: Did you know you can advertise on this station, LIKA Radio Midlands, plus our other offerings? Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट भी गया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Law 714, Virgin Media 809, BT 394.
6: Punjab, the biggest tunes.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
3: झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम.
4: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Bollywood's biggest 90s songs.

0: Breaker Radio. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Radio. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.